0: जब किसी से प्यार हो जाएगा।
1: तो प्यारवी, तुम जैसे लड़के ने कभी किसी से प्यार नहीं किया?
0: अफेयर तो बहुत हुए, लेकिन प्यार कभी किसी से नहीं हुआ सेनोरिटा। कोई मिली नहीं।
1: कैसी लड़की चाहिए तुम्हें
0: बताओ? एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आंसू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: Oh, sweet.
0: अभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब लगता है जैसे कोई अनदेखा अनजाना चेहरा बादलों में से पुकार रहा है।